मत की आशीष निमुख न बिसरौ तुम कौ हर हर सदा पजो जगदीश कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई माटी का क्या तुप है स्वामी मानस की गत एही सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों पुरसों झटी है तुद डिठे सच्चे पात साहो मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहंद साहो जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा वेसा हो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮਾਈ ਮੇਰੇ

होए कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड़े मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा किता केवड चीरा रहा। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड़ियाई।

जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तो भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हम पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपरी पुनराश

तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो पर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है।

जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही तेरे।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिख सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप कोई अड़िला।

ओ तेरियां रहमत है न बेअंत, कृपा कर मेरे भगवंत। तेरा नहीं कोई औंदा अंत, कर्म कर त्रिखा बजायां दी। हर गोबिंद।

0: इतिहास लिखता भाई अकल नूं पता ते लग गया पर दिन लंघदे ने उहदे मन विच कई विचारां घुमदियां पर एक मन विच वज्जा सहारा दे के रब ने होड़ा दे के निरंकार पातशाह गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने आख्या भाई अकल उहदे मन विच ही विचार पैदा हुंदी गुरसिख गुरु का प्यारा जिथे जबान कर ले उत्थे नभाउंदा है ये रब का हुक्म है जो कुछ होवेगा चंगा ही होवेगा भाणा है भाई अकल ने अपने नाल दे जिहड़े संबंधी सन गुरु के प्यारे उन्हां नूं आख्या हुण जो कुछ होया है उस निरंकार दे पाणे विच है मेरा गुरु भली करेगा एडा वड्डा भरोसा सी गुरु के प्यारे भाई अकल नूं लागी लोगों मंगा करके दिन मुकर कर लिया जिस दिन भाई साधु ने बीबी सूरती व्याहुण वास्ते आउणा है वह दिन चुन लिया मुकर कर लिया आ गया विआह लागे आनंद कारज तुकलाणी पिंड तो जंज चढ़ी तो आ गई इस वड्डे पिंड विच बरूहां ते जंज आई अजे दरवाजा अगे लगना सी जदों आए हुए जंज विच उन्हां लोकां नूं जांजी लोकां नूं तकिया ना गुरु प्यारिओ ते जा के बीबी सूरती दियां सहेलियां वेखदियां है वह भैणां वेखदियां है होर आए हुए गुरु दे प्यारे सतसंगी वेखदे ने भी जिहड़े बीबी सूरती नूं विआहुण वास्ते आए हुए जांजी लोक ने उन्हां विच इक वी गुरु का प्यारा नहीं हुण जिहो जे बाबा संगत विच रहिंदा मनुख उहो जे नाल उन्हां दी सांझ पै जाया करदी है इधर भाई अकल दे विच घर विच बड़े गुरसिख प्यारे आए हुए ने उधर विआहुण वास्ते आया होया भाई साधु उहदे नाल जांजी लोक उह जिवें दा भेस सी उवें दे बण के आए ते जा के भैणां ने सहेलियां ने उस भैण बीबी सूरती दे कोल पहुँच के आख्या भैणे किस्मत सड़ गई जापदी है तेरे ते रोम रोम विच्चों गुरबाणी दी आवाज़ हर वक्त उस निरंकार का नाम लैके गुरु नानक साहब सच्ची पातशाह महाराज के सिद्धांत अनुसार जाउनी है पर बीबी सूरती हड़िए भैणे जिहड़े तैनूं विआहुण वास्ते आए ने ना लोक वो सिख नहीं उते जापण दे ही मुसलमान ने वेखण विच ही मुसलमान जे लगदे ने गुरु पैरी सात संगत जा जिवें ये सहेलियां भैणा जा के बीबी सूरती नूं दसदियां उस वक्त वातावरण नूं कवि ने कलमबंद इउं कीता
1: सूरती नूं जाके दसण सहेलियां बैठ गईयां पासे होके ओ अकेलियां बैठ गईयां पासे होके ओ अकेलियां
2: पिंड वाले रह गए वेख के हैरान जै जानी सारे लगदे मुसलमान जै जानी सारे लगदे मुसलमान जै
1: सूरती नूं जाके दसण सहेलियां बैठ गईयां पासे होके ओ अकेलियां बैठ गईयां पासे हो गए हो अकेलियां
2: पिंड वाले रह गए वेख के हैरान जै जानी सारे लगदे मुसलमान जै जानी सारे लगदे मुसलमान

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए घर नौ निध्या वै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वन छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित सिस दित्ते बन बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवे।

कहां पयो जो दो लोचन मुंद के बैठ रहियो बाक ध्यान लगायो नहात फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहूं सुन ले हो सब

लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करी जिसनू पाई सा पाई दविंदर सिंह जी सोढी ने बड़े उत्साह नाल इना शब्दां दी कथा करके उस पुरानी याद नू ताजा करते हुया पाई सा पाई गोपाल सिंह जी नू श्रद्धांजलि अर्पण कीती है। ते इना शब्दां दा संगीत उसे पुराने ढंग नाल ही महान संगीतकार श्री के एस नरूला जी ने दिता है। टी सीरीज सुपर कैसेट्स वालों ए उम्मीद करते हां कि सारे माई पाई इस दित्ती हुई श्रद्धांजलि दा रस मानणगे ते सुपर कैसेट्स नू धन्नवादी बनाउणगे।

जे सतगुरु नदर करे। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होवे। ऐ सतगुरु आ निमक मात्र भी तू मेरे हिरदे विच वसदा है ना, भाव जिन्ना समा अख चमकण लगदा है, तू इन्ना समा भी मेरे हिरदे विच वसदा है ते मेरा हिरदा ठंडा हो जाता है, मेरा तन मन शीतल हो जाता है। ऐ सतगुरु बख्शिश करो, सदा ही मेरे हिरदे विच वसया करो, नाम नाल मेरी झोली भर देवो। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, किथे खुशियां किथे खेड़ा जिथे सतगुरु दी नदर होवे।

तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता पै पंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस भक्ता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हरखवंत आनंद रूप निर्मल विगासी।

0: समस्ति स्वरूप
1: परभंगी परमाते समस्ति प्रभुते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राज अर्जेश्वरम परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे
1: नमो राज अर्जेश्वरम परम वृदे
0: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुक्ते
1: नमो जोग जगेश्वरम परम युक्ते
0: नमो नित नारायण क्रूर कर्मे
1: नमो प्रेत प्रेदेवेशु तर्मे
0: नमो रोग हता नमो राग रूपे
1: नमो शाहंग नमो पूपे
0: नमो दान दाने नमो मान माने
1: नमो रोग रोगे नमस्तं सनाने
0: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्र
1: नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग
0: सदा सच्चदानंद सर्वंग प्रणास
1: अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी
0: सदा सिद्धदा बुद्धदा विदकर्ता
1: अदो ऊर्ध अर्धं अंगं हर्ता
0: हरं परम परमेश्वर पोष पालं
1: सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं
0: अचेदी अपेदी अनामंग कामं
1: समस्तो पराजी समस्त

0: नमस्त्वं नेनाते नमस्त्वं प्रमाते
1: नमस्त्वं गगनजे नमस्त्वं अपंजे
0: नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले
1: नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे
0: नमो राजराजे नमो साज साजे
1: नमो शाशाहे नमो महामाहे
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
1: नमो रोख रोखे नमो शोक शोके
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
1: नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं
0: नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं
1: नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं
0: नमो सर्व दिसं नमो सर्व कृष्ण
1: नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे
0: नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे
1: अपीजे समस्तं प्रसिजे
0: पालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासि
1: सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी
0: प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे
1: अखल योगे अचल भोगे
0: अचल राजे अटल साजे
1: अखल तर्म अलख कर्मं
0: सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं पाने सर्वं माने
0: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
1: सर्वं भुक्ता सर्वं जूता
0: सर्वं देवं सर्वं पेवं
1: सर्वं काले सर्वं पाले
0: रुआल चंद प्रसाद आद रूप नाद मत जोन पुर कपार
1: सर्वान त्रिमान देव पेवाद उदार
0: सर्व पालक सब कालक सब कोपित पा
1: जतर ततर विराजे अब तूत रूप प्रसाल
0: नाम धाम न जा जाकर रूप रंग न रेख
1: आद पुरुख उदार मूर्त जो अनाद शेख
0: सोना पे जाकर रूप रेख न राग
1: जतर ततर दिशा विशाओ फैल यो अनुराग
0: नाम काम बहीन पे कताम होने जाए
1: सरम मार्थ बत मार्थ दे मानता है
0: एक भूत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक
1: खेल खेल अकेल खेल अनंत को ब्रेक
0: प्रेम न जाने जे वेद और कतेब
1: रूप रंग न जात पासु जानिए के जेब
0: सात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन
1: चकर बकर फिरे चतर चक मानिए पुर्तीन
0: रूप सूर्य के विखे जग जाप ही जे जाप
1: आ देव नाद मुरो थाप्यो सवे जे थाप
0: परम रूप पुनीत मुरत पूरन पुर कपार
1: सर्व नित्यो संजन कर्ण पंजन हार
0: काल हीन कलास जुगत काल पुर का देश
1: तर्म तांसु परम रहत पूतला खपेश
0: अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम
1: गर्व कंजन दुष्ट पंजन मुख दाय काम
0: आप रूप मीक अनुस्तत एक पुर कब दूत
1: गर्व कंजन सर पंजन आद रूप सूत
0: अंग हीन अनंग अंग हीन अपंग नातम एक पुर का पार
1: सर्व लायक सर्व कायक सर्व कोपित पार
0: सर्व गंता सर्व हंता सत्य अनपेक
1: सर्व शास्त्र न जानिए जे रूप रंग और एक
0: परम वेद पुराण जाके नित माखत नित
1: कोर सिमरन प्राण शास्त्र न आवि बहु चित
0: पार चंद पे प्रसाद गुणगन दान मैं मा पार
1: आसन अपंग उपमा अनंग
0: अनको प्रकाश निस दिन अना
1: आजान बाहु शाहन शाहु
0: राजान राजपान आन पान
1: देवान देव उपमा महान
0: इंद्रान इंद्र बालान बाल
1: रंकार रंकालान काल
0: अनपूत अंग अपंग
1: गत में तपार गुण गन उदार
0: गुण प्रणाम निर्भय निकाल
1: अद्भुत प्रचंड में

के कारण पुनिंद है के रोजी दहिंद है के सर्वंग तली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौने के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र सोखे के सर्वत्र पोखे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए के सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे के आकल अलामे के साहिब कलामे हमे सुलसलामे सली कुतमदामे बलिंदुल मकाने जमीनुल जमाने हरी फुला जी में जराज कीने अजी जो निवाज है गनी मुल्क राज है प्रभुक्त प्रभा है संयुक्त सुधा है समस्त उपराज है सदा सर्व साज है निर्वाज स्वरूप है अगाध है अनूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे सुमन सर्वागे सुसर्वा अनुरागे के नरकम प्रनाश है प्रचुल प्रवास है प्रभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त

0: स्वयंवर है,
1: सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है,
0: ब्रह्मंड है, खलखंड है,
1: पार्थे पर है, करुणा कर है,
0: जपा जप है, थपा थप है,
1: अक्ता कृत है, अमृता अमृत
0: है, अमृता अमृत है, करुणा कृत है,
1: अक्ता कृत है, तरनी त्रेत
0: है, अजेश्वर है, परमेश्वर है,
1: अक्ता कृत है, अमृता अमृत है,
0: जपा कृत है, अमृता अमृत है,
1: निर्णायक है, खलकायक है,
0: स्वयंवर है, करुणालय है,
1: निपनायक है, सर्पायक है,
0: पंजन है, अर्गंजन है,
1: तापन है, जप जापन है,
0: अकलंकृत है, सर्वाकृत है,
1: कर्ता कर है, अर्ता हर है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है,
1: आत्म भस है, जस के जस है,
0: भुजंग प्रयात चंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे,
1: नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्र,
0: नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे,
1: नमो बिंद्र बिंद्र, नमो बीज बीजे,
0: नमो राज संताम संसात रूपे,
1: नमो परम तंतंग तंतंग स्वरूपे,
0: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने,
1: नमो मंत्र मंत्र, नमो ज्ञान ज्ञाने,
0: नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने,
1: नमो भोज भोजे, नमो पान पाने,
0: नमो कलह कर्ता, नमो सात रूपे,
1: नमो इंद्र इंद्र, अनादंग प्रभुते,
0: अलंकार रूपे, अलंकार अलंके,
1: नमो आशे आशे, नमो बांक बंके,
0: अभंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे,
1: त्रिभंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे,
0: एक श्री छंद, अजय अलय अपय अभय,
1: अबू अजू अनाश काश,
0: अगंज पंज लख पख,
1: अकाल दयाल अलेख पेख,
0: नाम काम अगह अटह,
1: अनाथे परमाते, अजोनी अमोनी,
0: न रागे न रंगे, न रूपे न रेखे,
1: अकर्म अपर्म अगंजे अलेखे,
0: भुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे, समस्तुल प्रणासे,
1: अगंजुला नामे, समस्तुल निवासे,
0: कामंग विभूते, समस्तुल स्वरूपे,
1: कर्म प्रणासी, सुकर्म प्रभूते,
0: सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी,
1: करिमल कुनिंदा, समस्तुल निवासी,
0: अजाय विभूते, गजाय गनी में,
1: हरियम करियम करीम रहीम में।

0: प्रसाद तव प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सुधान के देख फिर यो कर जोग जति के
1: चोर चुरादन शुद्ध सुधादन संत समूह अनेक मति के
0: सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के
1: श्री भगवान की पाए कृपाओं के एक रति बिन एक रति के
0: माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे
1: को तुरंग कुरंग से कुदल पौन के गौन को जात निवारे
0: हरि पूजान के पूप पली विदन्यावत शीश न जात बिचारे
1: एते पे तो कहा पे पूप को नंग ही पाए पधारे
0: जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे
1: गुंजत घोड़ गजान के सुंदर ही सती है राज हजारे
0: भूत पविक पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्री पा श्री भगवान पजे बने अंत को अंत के ताम सिदारे
0: तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक विशेख है
1: वेद पुराण कते कुरान जमीन जबान सबान के बेख है
0: कौन हार जति जत धार सभे सुबिचार हजार के देखे
1: श्री भगवान पजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेख है
0: शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दर्जान दलेंगे
1: भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख लेना हलेंगे
0: और अरीन मरोर मवासन माथे मतंगन मान मलेंगे
1: श्री पा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे
0: वीर पार बड़े बरे यार विचार है सार की धार बछया
1: तोर देश मलविंद मवासन माथे गजान के मान मलैया
0: गाड़े गढ़ान को तोड़न हार सुबात नहीं चक चार लवैया
1: शैव श्री सबको शरणायक जाचक अनेक सो एक दवैया
0: दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविक भवान जपेंगे
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब था थपेंगे
0: कुल प्रतापन बाढ़ जय दुन पापन के बहु पुंज खपेंगे
1: सा समो प्रसन्न फिरे जल सतर सवे अब लोग जपेंगे
0: मानव इंद्र गजिंद्र नराधव जौन त्रिलोक को राज करेंगे
1: कोट स्नान गजायक दान अनेक स्वयं बरसात भरेंगे
0: ब्रह्म महेश्वर बिशन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे
1: जे नर श्रीपत के प्रस पग ते नर फेर न दे तरेंगे
0: कहां भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे बक ध्यान लगायो
1: नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो
0: बास कियो बिखियान सब बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह से बतायो
1: साज कहो सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो
0: काहुले पाहन पूज धरियो सिर काहुले लिंग गरे लटकायो
1: काहु लिखो अरवाची दिशा में काहु पिशा को

0: मारा अपना जान करो पित पारा
1: सुबैद मंगाबो आप हाथे मोए बुझाबो
0: सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सेख सबे करतारा
1: चमेश का दे करिए सब वेरिंग को आशंगरिए
0: पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यास

0: महादेव को कह सदाशिव निरंकार का चिंतना
1: तुमरा
0: लखाना जाय पसारा के भी सजा प्रथम संसारा
1: रूप नूप स्वरूपा रंग प्योर आपके ऊपर
0: अंडा जे रसे तजकिनी उत्पय खान बो रज दिनी
1: फूला जावे तो कौन सी हो संग
0: सखी सी दिखाए असंभव आज गाच रूप संभव
1: तुम करो सिखो बार सिख सुंगरो
0: दो चेते उठवत पाता सकल मलेश करो रण
1: काता
0: पुरख जनपद परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे
1: जो कर कोई बात आए ताके काल निगनी आए
0: रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरि टरे तत्काला
1: दुष्ट जाय नर हो ताके ताप निग मार हो
0: रेत सद कर्मो सब होई दूर छाप सह सके ना कोई
1: एक बार जिंद में सिंबारा काल फास्ते ताए वारा
0: ये नर नाम तिहारो का हादार दुष्ट दोष तेरा सर्व ठोर मोह सहाई दुष्ट दोष ते लेहो बचाई
1: कंस करा पूर्ण सबराता
0: तिलबिक सहल दे को हरता दुष्ट दोखियन को छे करता
1: सूर्य दे दियाला पूर्ण ग्रह गंत काला
0: मन बाछल पल पावे सोई दूह न किसे व्याप्त कोई
1: रसने गुंजो यास रसना पावे स्ने मोच लचतता आवे।

0: हर कृपा जिन नाम लाए हैं से हर हर सदाते आवे कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे तिवे चलावे
1: सदगुरु सुनाया।

0: कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया करमी सहज न उपजे विण सहजे सहसा न जाए
1: संयम रहे करम कमाए
0: सहसे जियो मलीन है कित संयम तोता जाए
1: मन तो वो शब्द लागो हर चू रहो चित लाए
0: कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे ए सहसा इव जाए
1: जियो मेरे बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमेले तिनी जन्म जुए हारिया
0: ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो वे सारिया
1: वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाई फिरे
0: कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया।

0: शब्द तने हीरा जित जड़ाओ।
1: शिव सकत आप उपाय कह करता आपे हुकुम वर्ताए।
0: हुकुम वर्ताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए।
1: तोड़े बंधन होवे मुकत शब्द मन वसाए।
0: गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सो लिबलाए।
1: कहे नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए।
0: सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार।

0: माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये
1: मनो क्यों विसारिये हे वरदाता जे अगन में हार पहुंचावे
0: ओसनु कह पो न सकी अपने गुरु को ओसनु कह पो न सकी जिसनो अपने लिव लावे
1: अपने लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिये
0: कहे नानक हे वरदाता सो

0: ज्योतिष मिल रहे हर वसे मनाए।
1: हर आप मूलक है पाक ना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मन वंजारा, हर रास मेरी मन वंजारा, सतगुर ते रास जानी।
2: हर हर नित जपियो जियो लाहा कटियो दिहाड़ी।
1: ए तंत ना मिलिया जिन हर आपे पाणा,
2: कहे नानका रास मेरी मन होवा बनजारा।
1: ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए।
2: प्यास न जाए होर तकीते जिचर हर रस पल्ले न पाए।
1: हर रस पाए पल्ले पिए, हर रस बोड़ न तृष्णा लागे आए। कहे नानक हर अनरस विसरे, हर अनरस
3: कहे नानक हर अनरस
1: अनरस सब विसरे, जा हर वसे मन।
2: ए शरीरा मेरिया है तुम पे जोत रखी ता तू जग में आया।
1: हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया।
3: हर आपे माता आपे पिता जिन जीव पाए जगत दिखाया।
1: गुर प्रसादी बूझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया।
2: कहे नानक इसका मूल रचिया जोत रखी ता तू जग में आया।
1: मन चाओ प्रभु मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनिया।
2: हर गाओ मंगल नीर सखिये सोग दुख ना व्यापे।
1: गुरु चरण लागे दिन सबागे अपना पिर जापे।
2: आनंद वाणी गुरु शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो।
1: कहे नानक प्रभ आप मिलिया करन।

दीखिया दारू भोजन खाए, छे दर्शन की सोजी पाए। प्रणवत नानक अगम सुनाए,

चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहि जय कोट इंद्र इंद्राण साही साहन गण जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर